0: आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है。
1: 美国之音继续播送中文节目。美国近年来持续敦促台湾提高国防支出，以应对海峡安全局势。台湾行政院8月2日